धौन तुबिडावे तेहेन मीने क शल्लदाय दा तेना हेनेन अमसे हो हदी दाने अदे तून उम्ब तूना नातु तेदने ओन ऊधई ही दाब एहेनो दिवाती भी दाब गाल मिंदायनो ओन ऊधई मीन का दुकान दन हे अरे आन शाद गीक सीन हे अरे वेत अरीद गीक सीन हे अरे आन वे न दल्ली हे इतेन ते लिबने तुआ हो ए हुआ उम्बरे तुमामल इफ्तिक दाम तेनी उम्बतियो हदी दाने हेनिन निसरी वे तुकन तून दाई न निसरी ओकना और दाई बदाई ने दोकना लाभ दाई बदाई ने दोकना वे तुना ती दा इन हेनिन उम्बतियो हदी ने ने उतक अव्वल उन उतक दल्लीब तक एक एक रबे दल्लीबे का उम्बरु उन रबे दल्लीबे गुदान हो अर्री वो नान हो अर्री वे तिंदिये का उत्तोना बरुक दिले वे तिंदियो दाई न दल्लीबा शबुब न दल्लीबा तोन शिवप्तित दायित कतियक दाय दुलुब दल्लीबाया उधारे एनो को मिड्डा कर्रीफाया फायदे कर्रीफा एताने न तिंदियाया इदाय तिंदियाया अरे तोन तोकन दिलबा हा हा एया गीक्सा तिंदियो उगीगिस्त उकन मिशु अमागन ओधे के थे अमागन तिनीवे का लेत लेत बितकाय परोक के त्रिशदोक अरवक के त्रिश तुमगी तो वत शबुब तो वकते कने हमसे दुकान ते बरी एक रबे ते बरी एक उन रबे उन जमन ए बरी दई कतब जमन दई कतब कतीने ते है उन मर मर जमाने मर जमाने तिशबोबे एदने तकारा एहें इन बते जमन शुबीत शबुबना तिशबोबीत बरे तिनी वाया अरे जमन फाया मेने तो करा उन बतो यक्सेतित फिदने तिंगी दागी गिस्तिनिया ले तिंदिये का तुमादा बरियो तेफे तुम बतो अनहाते कती तुमादा तेन हदियो ओ दई कित रिशित बे तुनाती दा दाई ना तिशिश बोबे तिनी वे तोनात तूना तू राव ना ना तो तिंदिये तो उराबे कतियक तुम अरे कतियक उन द खुदरावाद कतीने बाबिंजे ले कतियक जीरजी ले कतियक अफरे यो अफरे कराय नसरे का एनो कब कितिये उन बरो अफरे बगदा सेतीत उदाइब शिवफ्तीत शिश बोबी शुगुडीत देगी गिस्तिने धन तो बिडावे दाइब शाला दा तेना गले करो शाला मिकृतीत ओम कर उदाइब दई तवा तेना हेने हल्ला न हुआ दिने तोन उन ओधई दुकाने हुआ आन इन इन द रबी गीक से हुआ इन बरेओ हरीद नहीं तोन तो दाइत ओध ही ना तू न ते मगे हो फिदना दा साना बिम बतियो इन बलिब दिया उकना मियादी मसे हदीद नहीं हेने उत्तोन उन तेन हल्ला न हदीदा ने नाते शात ते कतियक तोश तोकन तो शात अमसे गीक सा तिंदिये का बरुक तोय हर्री दो दाई था अति हर्री दाया मल्ला तोय असे दासे ति ओधे रुबो किलो व नुस किलो व वेर व तिनियो देन ओदोर ओ तो वजन व मेजान तो दाम तिनी नाति दाय दाउ जिने ति तिनी वाया तू शारे तोकन शिविप्ति तो बैतरे से तोपति शंबी व दाई ते कतिय बित्ता अमाक ते कतिय ओधे लेत के तिरेशित अरे तोश उन ओदोर उगीक सा तेरने तीफ दई कुमेनिक वे न दई कुमतेक वे नोदोर नदीफ मीनान नस मीनान दासित उम्बतो तोकन गित्तीत नि आया ना ना तु तिंदियक उम्बतो तीफ दई दायतित दई कुमेतित मल्ला दिनीवे का उधई यमकिन उम्बतो कितरेशित यमकिन दायत कित्ते बित उम्बतो मल्ला बरोक कितरेशे दोग दोग दाई न कित्ते हराम होई ते तोशी का बित्तो नाती दाय उम्बतो गुनो खोई दिन तू न तू राव ना ना तु तिंदियक रबे बुएर गीक सा तिंदियो हैडी बिकतीने क्वारे बिकतीने इदाइब की दन्ने आ एमक हुई दीत एमक की एमक हुई दीत इदाइब की दीत मतलब हर रोए कतियक एरा रोए कतियक दाई न ओधई तिनी उधई उन्हें इन्हें ने तुने सरी हुए तो कन्ते करना दाई न ने सरी ओकना ओ तो न थो हदी दने ओ तक रबे गीक सी नहीं हुआ और आ वो इनी नुआ वो इनी नन अरे नाथ शंबीब इदाइब इंदिये तो ना हुआ तोन तु इनीने तोकन मिड्डा इनीने तोना हुआ शिविप्चित तोन तु दाईत इनीने तोन उम्बतु अर्रीव अरे उन तुमेजान बाबाडिन आनांदे दुकाने बेफे तुमेजान दाय वजन औजिन आना उम्बतु बरेक रंशी दोकना हराम हुई बातो शिक्का बाना कुबित तो नाती दा उम्बतु मुहिमीत तू राव तित्तेन ति दाईत ति गीगसे गीगिस्तेनित इम्बते शगवा ढरुआ दे हैं सुगुन्ना तो धाई दा दे लिबना अरे आन तेकना तो इन रिस्ति अरुआ दे हैं
toy resanat shishbobnat daita ati deidelibna unda are mataimewa matabixe wa ehen anda urabi gixen mataim masalan mataileb ehen umbara tumare udhayida tidalibnu ben odor dai tumare deidelibna tumare tokna tone tone tuneti da dasene daibne e daimia hinat daita ati nabat feshat umbato hina are omin okna tundiwa tokna matami befir tisin hisa tunasas un tarabeza tikatek tena tumare idanne ikatine imbare daib sinastit daita ati tini waya are otak urau matabikhe behen enda ikatine un odor yade tegidne wa yade tetene ben odor yayak tisinisna ugarok tisinisna odhai leit amag nahitit bare amag buddi miadi betunati da umbatu arriwokna shalla dai thati datena daina timirna daina teina kassanhan un alla kassen daina sari onako daina dayana sakana diayon enen stirokne.